मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: राधा में कान्हा।
1: ना ना ना ना।
0: क्या?
1: बिजली और बादल,
0: तुम दोनों हो पागल।
1: है खूब ये जोड़ी,
0: बस देर है थोड़ी।
1: तुम जीवन साथी,
2: हम सब बाराती।
1: रंगों की डोली
0: ले आई होली,
1: भर लो पिचकारी।

0: मैं भूला रास्ता,
1: रास्ते पे आ जा,
0: मैं थाम लूं भैया,
1: मत छेड़ो सैया,
0: तुम दिल मत तोड़ो,
1: तुम आंचल छोड़ो,
0: तुम काहे रूठी,
1: मेरी चूड़ी टूटी,
0: दिल मेरा टूटा,
1: चल हट जा झूठा,
0: तो नाच में गाऊं,
1: तो बैठ में जाऊं,
0: मुश्किल है जाना,
1: तू है दीवाना,
0: मुझे अंग लगा ले,
1: बस रंग लगा ले,
0: नीला के पीला,
1: नीला ना पीला।

0: Radio Jagriti. 102.7 FM.
1: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Need a little self-care while you're shopping at the Fabinia Expo? Treat yourself to a relaxing jumpy massage or spa service. Shopping and relaxation all in one stop.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: One place, countless options. That's the Fab India Expo in Chaguanas. Get bridal and groom's wear, jewelry, furniture, footwear, home decor, and much more. Open daily from 11 a.m. to 9 p.m.
2: Magical music to tug at the heartstrings. This is Radio Jagriti 102.7 FM.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: One place, countless options. That's Fabinia Expo in Sugawonus. Bridal and groom's wear, jewelry, furniture, footwear, home deco, and so much more. Opening daily 11 a.m. to 9 p.m.
2: Jason Kalu is on.
3: 102.7 FM Radio Jagratina.
4: The voice of a Jubin Nautil comes your way on your number one.

बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्री व्यासदेवाय नमः, ओम नमो परमात्मने नमः।

देव की जय, वृंदावल्ली हरिलाल की जय, आदि शक्ति दुर्गा माता की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय। माय डियर डिवोटीज, एज वी हैव स्टार्टेड इन्वोकेशन, आई नाउ इनवाइट द मेंबर्स टू गिव अस ब्यूटीफुल भजन्स एज वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर रामायण कथा। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय।